भय करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट बनास्पति सगरी दिख गए हो के देखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

अंत न कहो कोट बरात हमारे कहो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मालक दे दर ते हाजी अलग बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दरों खाली रह जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ छोरियो करो ते सारे हाजी अलग कीर्तन हो रहे कीर्तन में प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। ये तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी वही सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है जिस पाउना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है। बदले बच्चा

आज डट के लोड़ इस प्रचार की, बहुत लोड़। आम बंदा कहंदा मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, महाराज कहंदे अवस्था बना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं, कबीर हम सब ते बुरे, हम तज भलो सब को, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। ये दवाई ते कौड़ी है पर खा लो ते बड़ी शांति। अज बहुत लोड़ है प्यारे इस प्रचार की, किसी के औगण नूं जरना ते कलेश का समा लंघा लैना। मैनू याद है आ संत बाबा भूरी वाले है ना, असी बाबा जी के बचना दी शील्डां वंडदे आ, एक ते आए प्रोग्राम ते ते शील्ड देती ते उते बचन लिखा सी निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा है। बचन है बाबा नानक सिंह जी, निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा है। मैनू 5 महीने बाद मिले ते कहण लगे ओ मैनू शील्ड बड़ी कम आई। मैं कहा जी किवें, कहिंदे जिहड़ी मेरी गड्डी ना छोटी जी बस है अपने बहन दी, कहिंदे मैं जिथे अगली सीट ते बहना ना वो सामने लाई हुई है, ते कहिंदे इन्नी काम आंदी है कि कोई गड्डी कोई दूजा बंदा माड़ी ला जांदा जां कुछ होर गल हो जांदी ते कहिंदे कई बारी पहले आ जांदा सी गुस्सा, ते कहिंदे फिर वो जदों शील्ड पड़ ली दी ना वी, कहिंदे उस वेले एक मिनट निम्रता रख ली दी, लड़ाई टह जांदी। आखो सतनाम, उहदा औगण जर लिया। एवें नहीं महापुरशां ने कोई बचन कढे हुंदे, उहनां दी गहराई हुंदी, गहराई बीबीओ इनू वरतना, इहदा लाभ लैना, इहदी गहराई च जाना। घर च कोई चांस होवे दूजे दा औगण ही हुंदा ना, उहनू अद्धे मिंट मिंट लई जर जाओ, कई वारी कई कलेश दे टाइम लंघ जाणगे, बीत जाणगे। निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा, ना रखो जवाब दे दो, हो गया शुरू काम। इह वी निर्धन नूं पालणा भाई अज लोड़ है, क्यों इस वेले युग जा रहा है फुल फुल पता फुल ईरखा दा युग है, ते दवाई कौड़ी है, भावें कोई चप्पा पुड़ी लै जाना ते भावें अद्धी पुड़ी लै जाना पौनी पुड़ी लै जाना, लै के जरूर जाना ताकि संघ च आया किसे थाएं आवे। युग है इस वेले, आ दिल्ली आपां रकाबगंज गुरुद्वारे तो हाजरी ला के निकले सां, जाण ही लगे अगली सीट ते बैठा सी, एक बजुर्ग ने शीशा खड़काया सी, शीशा खोलिया तो दोवें हथ करके उन्हें कहा सी, कहिंदा जी बाणी सारियां मनोकामना पूरियां कर दी। मैं सीट ते बैठे बैठे मैं कहा हां जी कर दी है। कहिंदा जी बाणियां सारी मनोकामना पूरियां कर दी। मैं कहा जी कर दी है। मैनू कहिंदा मैं 2 पाठ सुमनी साहब रोज करदा वा किसे बंदे लई कि उहनू सड़क ते रुलदा वेखां। कहिंदा रुलेगा ऐस समाज। कई बंदे निर्धन नूं पालणा की बाणी भी इस लई कई वारी पढ़दे आ कि दूजा सड़क ते रुलदा वेखे। हुण मैनू जिहड़ा गड्डी चलाउणे कहिंदा जी चलीए, मैं कहा यार इहने विच फसाता, पहलां कहिंदा मनोकामना पूरियां करदी, मैं कहा करदी ऐ, कहिंदा 2 पाठ सुमनी साहब दे करदा वा फलाना सड़क ते रुले रुलेगा। मैनू कहिंदे बजुर्ग बड़ा तेज सी, कहिंदे बोलदे नहीं हुण। ऐसा है, इहनू की कहांगे ईरखा दा युग। अमरीका असी जिहदे रुके ना घर, हुण जिस गुरुद्वारे नूं पिछे जे अखबारां च पढ़िया तुसीं, अग भी लगी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क, उत्थों असीं निकले सां, एक सज्जन ने दास नूं कहा सी घर आओ साडे। मैं उहदा टैलीफोन नंबर एड्रैस लिखण लग पिया, दूर दूर जगह दी फोन ते तेरे नाल टाइम सैट कर लैणगे कर लांगे। ते जिथे रुके सा ना वह मेरी बांह फड़ के लै गया पासे, कहण लगा इहदे कोलों की लिखदे पए सो। मैं कहो कहिंदा घर आओ, ते उहदा फोन नंबर एड्रैस लिख रहा सी, ते मैनूं कहिंदा इहदे घर नहीं जाणा। आखो सतनाम, कहिंदे इहदे घर नहीं जाणा। मैं कहो क्यों? कहिंदा तुहानूं नहीं पता साडे घर 5 पाठ सुमनी साहब दी रोज दी सेंची चलदी पई है कि इह बंदे नूं असीं रोटी तों बुरकी बुरकी तों आतर हुंदिआं वेखी। मैं कहा तेरा भला हो जाए, हुण भावें उह टेप ही सुण लवे गुस्सा कर ले। हां जी हुण इह किन्ना अणजाण पुणा है,
ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਾਤਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

अमुल अनमोल ते दरगाही बाणी दा कीर्तन अते समाज सुधार जीवन जुगत अते अध्यात्मक विचारा पाई गुर इकबाल सिंह गुरुद्वारा माता कौलां जी वाले तिना दी रसना तो सरवण कर रहे सी। भाई साहब तो गुरु नानक पातशाह जी निष्काम सेवा लै रहे हन। आप संगत दी दित्ती माया रूपी सेवा नाल अमृतसर लुधियाना जलंधर जंडियाला गुरु बरेली ते दिल्ली जमुना पार विधवा बीबिया दे केंद्र चल रहे हन। इस दे नाल ही देहरादून लुधियाना जंडियाला गुरु ते अमृतसर विच हस्पताल दे रूप विच सेवा अते होर 46 जगह धार्मिक ते समाजिक सेवा चल रही हन। हर पल हर घड़ी हर पक्ष तो आप संगत दी असीस की लोड़ है। भाई साहब वल्लों बेनती है अमृत छको अमृत वेला बनाओ अमृत बाणी नाल जुड़ो।

हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। अते दूजा शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी पेंटल। शब्द बोल हैं, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। लो पहला सर्वन करो डॉक्टर गुरु नाम सिंह जी पासों शब्द, हर जन राम नाम गुण गावे।

बख्शिश ले लेगा। पर मनन भी कोई करेगा जो मन करके करेगा, मनन वही करेगा जो पिता दे हुक्म नु सुन के समझ के कमाएगा। सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखण वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। अगवाई फिर बेनती करदे हां, सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखण वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। अगवाई जे एक पत्नी पति का हुक्म मनेगी, मनन करेगी मन करके, ते अपने पति दे प्यार दा सुख ले लेगी। लेकिन अवस्था वही है जे अगर पत्नी अपने पति दे हुक्म नु सुनेगी, समझेगी, सिखेगी, मनेगी। जे सिख गुरु दे हुक्म नु मनदा, मनन करदा मन करके, ते सिख गुरु दा प्यार ले लेगा, गुरु सिख दे अंदर वासा कर लेगा, वो गुरसिख होएगा। पर गुरसिख भी गुरु दे हुक्म नु, गुरु दे शब्द नु सुने समझण लई, बाणी दा पाठ करे समझण लई, बाणी सुने समझण लई, समझण लई, समझे इस करके सिखण लई, सिखे इस करके मनण लई। आखो वाहिगुरु, सिर्फ पाठ ही ना करे लेकिन पाठ करे समझण लई, समझे इस करके सीखण लई, सीखे इस करके मनण लई। मैं पाठ कर लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की? आखो वाहिगुरु। मैं गुरु का हुक्मनामा सुन लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की?

ते बख्शिश भी नहीं। सच है पर मनण का संबंध मन नाल है। जिन्होंने मन करके मनिया, जिन्हां दे अंदर मन विच प्रेम सी मनण लई, उन्होंने सुनिया भी मनिया भी, पर एक जुगत नाल मन कीता पाओ आपको वाहिगुरु। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, तुसी सुनिया। जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ही नहीं, भोग पै जाएगा आपको वाहिगुरु। मनोगे की जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ते मन विच प्रेम रख के मन लिया, फिर तो अंतर्गत होता जाएगा आखो वाहिगुरु। मैल खत्म हो जाएगी, निर्मल हो जावांगे आखो वाहिगुरु। गल मनन दी, अज असी दुखी क्यों हां, सुखदाते दी गल मनदे ही नहीं आखो वाहिगुरु। अज साडे भटकना क्यों है, सुखदाते गुरु परमेश्वर की गल वल तो सुनते ही नहीं, सुनते समझते नहीं, समझते मनते नहीं आखो वाहिगुरु। जिहड़ा पाठ कर रहे हैं ना, एक मैं बेनती करा, मैं दुखी हां, रोगी हां, मैं डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने मेरी नबज फड़ ली, डॉक्टर ने नबज फड़ के मैनू मेरी बीमारी दस दी, एक पर्ची ते मैंने दवाइयां लिख दित्तियां, दवाई खाने का ढंग दसता सवेरे दोपहरे शामी, नाल दस दी विधि। तुसी दसो कि मैं पर्ची नू हाथ विच फड़ के पाठ ही करी जावां, कि मैं डॉक्टर की पर्ची का सारा दिन पाठ करता जावा, दवाई सवेरे खा दोपहरे का शामी का, सवेरे खा दोपहरे का शामी का, लेकिन ना मैं दवाइयां लियावां ते ना मैं खावां, कि मैं उस पर्ची की आरती उतारी जावां, कि मैं उस पर्ची की जोता जगाई जावां, मैं ठीक हो जावांगा आखो वाहिगुरु। समझ की गल ऐसी कि मैं डॉक्टर की गल जिन्हें मैं नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, किसे को समझा, डॉक्टर को समझा या किसे को समझा, फिर देखा मैं दवाई सवेरे शामी किवें खानी, विधि किवें है, परहेज की है। ठीक है, मैं डॉक्टर नाल प्यार करांगा, मैं डॉक्टर का सत्कार करांगा, जिसने मेरी बीमारी लभी मेरे मन भी डॉक्टर का सत्कार होएगा, डॉक्टर की याद होएगी, डॉक्टर नाल प्यार होएगा जिसने मेरी बीमारी लभी, लेकिन डॉक्टर भी मेरे से तां प्रसन्न होएगा जेड़ी मैं दवाई लिखी है, ये मरीज खांदा भी है कि नहीं आखो वाहिगुरु। अज साडे अंदर भटकना, असी खिजदे हां, खपदे हां, खिजदे हां, अपने आप नूं तरमी कलाउण वाला भी खिजी जांदा है, हाथ विच गुटका फड़ के पाठ करदा फिर भी कल्पी ते खिज जांदा है, क्यों? मेरे गुरु वैद ने, मेरे गुरु परमेश्वर ने इस मनुखता की जमीर उची करन वास्ते, इसकी तकदीर उची करन वास्ते, इस कराए पे होई नू राहे पाउण वास्ते, किरत कर्म के विछड़े नू मुड़ के मिलाउण वास्ते, इसका सच्चा ते सुच्चा आचरण करन लई, इस दे विच नेकी दे गुण भरन वास्ते, परपकारी मुजस्मा बनाउण वास्ते, सरबत दे भले लई इस दे अंदर सोच भरन वास्ते, मेरे गुरु परमेश्वर पूरे वैद ने डायग्नोज किया, इसकी बीमारी दसी ते नाल तुर दरगाही बाणी दे दिती आखो वाहिगुरु। तुर दरगाही बाणी, इस बाणी नू सुनी, इस बाणी नू पढ़ी, लेकिन समझण वास्ते समझी, इस करके सीखण वास्ते सीखी, इस करके मनण वास्ते, जे परमेश्वर दी बाणी ए जड़ी औखट है तेरी जमीर नू उच्चा करन वास्ते, सच्चा ते सुच्चा आचरण बनाउण लई, तेरे विछड़े होए नू मुड़ के प्रभु मिलाउण लई, तेरा किरदार उच्चा करन वास्ते, तेरा आचार उच्चा करन वास्ते, जे अगर तू परमेश्वर दी बाणी नू सुने, इस लई समझण लई समझे, इस लई सिखण लई सिखे, इस लई के मनन लई, जे तू गुरबाणी दी विचार नू छकदा जाएगा, दुखां दा नाश हो जाएगा आखो वाहिगुरु, सुखां दा प्रकाश।

0: आवाज जिसका संबंध शब्द नाल है, शब्द मन का तत् है, आकाश शब्द का विषय है, नक सूंघता है जिसका संबंध गंध नाल है, गंध मन का तत् है, धरती गंध का विषय है, स्पर्श का काम छूना छूना का संबंध स्पर्श नाल है, स्पर्श मन का तत् है, पर हवा स्पर्श का विषय है। हुण इस तरह समझ आती है मेरे गुरु ने कृपा करके बख्शिश की थी। कैसी बख्शिश? एक गल मैं स्पष्ट कह दिया, मैं अपने मन को खुद समझाना होवे मैं अपने मन नाल नहीं समझा सकता। बेशक के शरीर मेरे अंदर मेरा मन टिकया होया, मैं अपने मन नाल अपने मन नू नहीं वेख सकता। कारण की है, मेरे मन का स्वभाव ही वही है। जिस मन नाल मैं वेखना चाहना उसका स्वभाव भी वही है, जिस मन नू मैं समझना चाहना उसका स्वभाव भी वही है, जिस मन नाल मैं समझाना चाहना उसका स्वभाव भी वही है। मैं अपनी अखां नाल अपनी अखां नू नहीं वेख सकता। मेरी अखां विच पिया होया सुरमा अखां खुद नहीं वेख सकदियां। मैनू अपनी अखां नू वेखण वास्ते शीशे दी लोड़ है। मेरी अखां विच पए होए सुरमे नू वेखण वास्ते अखां नू शीशे दी लोड़ है। जे मैं अखां वेखणियां ने शीशे दी लोड़ है, मेरियां अखां बिना शीशे तो अपनी अखां नू वेख नहीं सकदियां। मेरियां अखां बिना शीशे तो अखां विच पए होए सुरमे नू नहीं वेख सकदियां। ते सच ए है कि मेरा मन अपने मन नू नहीं समझ सकदा, मेरा मन मेरे मन नू नहीं वेख सकदा। इस करके मैनू अपने मन नू वेखण लई गुरु दे मन दी लोड़ है। गुरु दा मन है, गुरु दा शब्द वाहिगुरु, गुरु दी आत्मा है, गुरु दा शब्द। मैनू अपने मन नू वेखण लई गुरु दे शब्द दी लोड़ है। इस करके मेरे मन नू समझाउण लई मैनू गुरु ने गुरु दा शब्द दित्ता है, सच्चे दा सच्चा शब्द दित्ता है। क्योंकि मन दा इक तत् है शब्द। मेरे गुरु ने मेरे ते अपार कृपा कीती, मेरे मन नू सच्चे दा सच्चा शब्द दे दिता। जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नू मिल गया, जदों मन दे अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, सच्चे दे सच्चे शब्द नाल मन रंगिया गया, जदों मन विच सच वस गया, दूसरे तत् भी बदल गए। आखो वाहिगुरु, मेरी देखनी भी बदल गई। पहला तां मेरी देखनी विकारां वल सी, जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नू मिल गया, हुण निरंकार नू वेखण लग पई। विकारां नू वेखण लई दुख सी, निरंकार नू वेखण लई सुख है। आखो वाहिगुरु, जदों अखां विकार वेखदियां सी ते दुख सी, जदों ओही नेत्र निरंकार नू वेखण लग पे ते सुख। पते पते चों, जलां चों, थलां चों, महीजल चों, जदों मन के अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, मेरा सुनना भी बदल गया। कच नहीं सुनदा हुण सच सुनदा। आखो वाहिगुरु, कच सुनन विच दुख सी, निंदिया सुनन विच दुख सी, चुगली सुनन विच दुख सी, हुण सच्चे दे सच्चा शब्द सुनन विच सुख है। जिस सुनी मन तन हरिया हुआ, आखो वाहिगुरु सुख है। हुण सुनो सत बाणी वाला बन गया। आखो वाहिगुरु, पहला तां बोलदा सी कूड, दुख सी कूड बोलण विच दुख सी, झूठ बोलण विच दुख सी, कबोल बोलण विच दुख सी। हुण तां सच्चे दा सच्चा शब्द बोलण लग पिया। पहला तरह तरह दे जीव दे चस्के दुख देंदे सी, रोग पैदा करदे सी, बहुत साधों दुख प्राप्त होवे। हुण तां सच्चे दा सच्चा रस पीण लग पिया, रसना राम रसायण माती। हुण तां सुंघना ही बदल गया, हर चरण कंबल मकरंद लोभत वाला बन गया। ਹੁਣ ਪਰਸਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।
1: ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
0: ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੇਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਛੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੀ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ ਤੱਕ ਛੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,

कहते नंदन होएगा ही नहीं, तेरी पत रह जाएगी, दरगाहों पत रह जाएगी। अतो वाहिगुरु, जे तू मनन कर गया, तू तो टुटिया होया सी, तू तो पाटिया होया सी, आ मैं तेन जुगत दसा, तेरा मन भगती नाल सीता जाएगा। आखो वाहिगुरु, जे तेरा मन ही भगती नाल सीता जाए फिर तो दुखां का सवाल ही नहीं पैदा होंगे। आखो वाहिगुरु, फिर तो दुखां का सवाल नहीं, दुख उन्होंने नाल हन जिन्हों का मन भगती नाल नहीं सीता गया। दुखी ओने भटकते, ओने खपते, ओने खिंचते, ओने जिन्हों का मन संसार नाल जुड़िया निरंकार नाल नहीं।

सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत कोई पीवना, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ बनाशी कर में पाया, गुरु संत मिलाया, अखवाई।

ऐसा सुख देंदा है जेड़ा फिर कदे मरदा नहीं। गुरसंत दा ही अनुभव, गुरसंत दी सिख्या, गुरसंत दे शब्द दी कमाई ऐसा प्रकाश करती है फिर समझ आ जाती है। ए मन लीन पे सुख देओ अपवाई, भगत कबीर ते गुरप्रसाद वरत्या। इस गुरप्रसाद की कृपा द्वारा, गुरसंत की कृपा द्वारा उन्हां दा ए अनुभव हो गया, जियो एक अर सगल शरीर। इसे अनुभव विच बोले, इस मन को रब रहे कबीर, सचमुच गुरु का मन ही साढ़े मन समझा सकता है। गुरु का मन गुरु का शब्द होता है, गुरु की आत्मा गुरु का शब्द है। फिर समझ लेना, गुरु का दर्शन भी गुरु के शब्द का दर्शन है, गुरु का संग भी गुरु शब्द का संग है, गुरु का वचन गुरु शब्द है, गुरु की मत गुरु शब्द है, गुरु शरीर नहीं शरीर राही प्रकाश करता है। शरीर का जन्म भी लेंदा ते मर जाता है, लेकिन गुरु सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ऐसे गुरु अविनाशी दी शरण, गुरु अविनाशी दी याद, गुरु अविनाशी दी सिख्या ही सानू सदा सदीवी कहम रहने वाले सुख नाल जोड़ सकती है। आओ गुरु गुरु शब्द का आसरा लेंदे हुए अपना मार्ग गुरु शब्द नूं बनाते हुए जीवन का मनोरथ गुरशब्द राही पूरा करन लई गुरु ते लड़ लगी। अपना मन गुरु दे हवाले करके बाकी जिंदगी गुरु दे मन नाल जीना सिख लईए। जिन्हां ने गुरु दे मन नाल जी लिया उन्हां सिखां ने अपने गुरु नूं रजा लिया। आखो वाहे, जिन्हां ते गुरु रीज पिया उन्हां नूं सिख पा गया, जिन्हां नूं सिख पा गया गुरु ने उन्हां विच ही वासा कर लिया। आखो वाहे, गुरु चेला चेला गुरु पाया। आखो वाहे, सारे बोलोगे गुरु चेला चेला गुरु पाया। इत्थे मैं गल होर स्पष्ट कर दिया, सतगुरु नानक देव जी ने भाई लहणे नूं मत्था नहीं सी टेकिया, धन गुरु अंगद देव जी नूं टेकिया सी। कदों? जदों उन्हां दे अंदर शब्द का प्रकाश हो गया, शब्द नाल शब्द का प्रकाश हो गया। इस दा भाव गुरु नानक ने किसे शरीर नूं मत्था नहीं टेकिया, गुरु शब्द नूं मत्था टेकिया। आखो वाह, इस दा भाव गुरु नानक ने किसे शरीर नूं मत्था नहीं टेकिया, गुरु शब्द नूं मत्था टेकिया। आखो वाह, बस इतनी गल समझ लेना, गुरु शब्द नूं मत्था टेकिया मेरे गुरु ने, तुसी भी गुरु शब्द नूं मत्था टेकते हो। आखो वाहिगुरु, तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करना गुरु शब्द नूं नमस्कार करनी है। आओ फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

थोड़ी नजर करे जय पंडित्रि सतगुरु पाया जय बुद्ध जन्म परमया सतगुरु सत सुनाया सतगुरु देवता तक उन्हें सत सुना लोग सुभा।

अंतर सोई। दर्शन दृष्ट ध्यान धर, दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गोरे मूरत होई।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रह गए। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ

संगत दे झूठे कौले माई दे पे आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले माई जान बाबा ही कोले माई दे पे कोला हाथ चे नाल नाल सिमर नाल नाल कोला नाल नाल

छह गुरु अर्जुन पातशाह श्री सुखमणि साहब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा कहते ने, जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया गया? कहते ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, नाउ तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करने वाला नरका दे विच नहीं जाता, सिमरन करने वाला। तो जिहड़ा सिमरन करता है नरकां दा भागी नहीं बन सकता, इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया।